बिल्कुल जनाब, साथ चित्र के रेडियो खड़े एफ एम 94 दिल भर सवाबी। थैंक यू सो वेरी वेरी मच जी। यो दुनिया मनने जी, आप करना एंजॉय करे जी। तासो लराजू यकीन के जी, तासो खफाए कना या तासो भी सुरन जमुग प्रोग्राम या मजा न गई कना। हां

भजूपुरी उपीडी के भी 24 घंटे सर्विस, लेबर रूम, मेडिकल स्टोर, अल्ट्रासाउंड, इको, ईसीजी, जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड। नो पता या साथे टूपी मेडिकल केयर सेंटर, अयास प्लाजा, जड़ा मेले लार टूपी। मोबाइल नंबर 0335-666-2878। दो नंबर दे 0336-444-58-88।

सू लखी रेडियो और सरवर सना द सवाबी रेडियो द मरदान रेडियो द सारसदी रेडियो द बलोचिस्तान द क्विटा टोलो हागलो रागलो मलगरो दोस्तानो मशरानो कुशरानो लुयो वड़ो औ जनको औ अलकानो ता हर कले औ जोर तो बिल्कुल स्टडी मशू आयमा स्टडी मशूर तो आयमा मोस्ट वेलकम राजी और देवबल सरा आवाजुनो और नशरिया देवबल सरे देखो जी जमुसरे लाइव और बिल्कुल बराहिरास नशरियात लाइव हो रही बेलाडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान तासुल रोडी शानदार और मजेदार ड्राकम की जमुंग तकसीमो द सलवी उख्तु लाख रुपये इनामा बता गए इनामा दो ठूल नलवी नाम से दिनोखा मेहरान मेहरान मोटर कार दे जी

0: Corona, Kalisa, Dira, Dira Mubarak.
1: Assalamualaikum. मैं क्वीन ऑफ सिलियत फ्रॉम क्वेटा. मैंने बुलाया मैं यूज़ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यूज करें. आप सबको ब्रांड तमाम तीन सौ दो सौ फैमिली को मेरी तरफ से ब्रांड लॉन्च की फेवरेट भी बहुत बहुत मुबारक.
2: अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मिला वालों ने मीना लफरी दी दे जमरोज न सा सुतुल सा दे बिलाडू न सा गेरा डी रडी रा मुबारक सा और डॉक्टर से एक दुकान दुकान न कर खान दमा डॉक्टर से बदन तीन से तत्काल खबर का
3: मेरा नाम उसकी जान जान लकी को न करे जी. अस्सलामुअलैकुम जैन शबनम दानिश जमात तरफ न द बिलाडू कली से डी रडी रा मुबारक सा जी. द बिलाडू न केक मुंगम रावड़ी दे बिलाडू न सरम डी अमीना को पकाए दे चुतुल दे बिलाडू न केक रावड़ी और द कली जा सरी करम.

0: back right after the commercial.
1: Zere Ahman Homeopathic Sawabi Branch Intikhab Yad Saati Paw Main Jangiri Road Bani The Shamansur Baba Madrasa Padewal Hem Homeopathic General Sawabi Homus Khale 0393 Haider Mumman Homeopathic General Aspatal Uzdo Pekhawar Sarasara Stasukhar Paw Sawabi Ki Hum
2: Zindagi एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन हर सांस ताजगी भरी महसूस दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही में जहांगीर शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान दात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का, रशदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। मोमिन होम्योपैथिक सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ।
0: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
3: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हुई कुचरता द दग जवानको प वक्त बानी गम उनकलेशी न प रारवान वक्त की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर रजू की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाजिदा ना द दग दानो चुकम दागुन दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड ट्री ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो के दनन दनन स्तासु दानी और दानु दाहुना प मुकमल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

भाई आज का जो मौजू है, मौजू आप लोगों की समझ में आया है या फिर मतलब ये है कि आपके जहन से निकल चुका है? देखें लिसनर्स, कहा जाता है कि बच्चे की पहली मतलब जो दरसगाह होती है या बच्चों की पहली दरसगाह, उसका मतलब घर होता है, उसका मतलब होम टाउन होता है। बच्चा बोलने से पहले देखता है, सीखता है, सुनता है और सुनने से पहले जो है ना महसूस करना सीखता है। इसलिए घर में होने वाली हर बात, हर रवैया और हर आदत उसकी शख्सियत पर गहरा असर डालते हैं जी। अगर घर में मोहब्बत, इज्जत, बर्दाश्त और एक दूसरे की जो है ना कदर की जाए ना, तो बच्चे भी यही खूबियां सीखेंगे। वो दूसरों का एहतराम करना सीखेंगे, सच बोलना सीखेंगे, अच्छे अखलाक मतलब जो है ना वो अपनाएंगे, अच्छे अखलाक वो हासिल करेंगे। और इसी के बरक्स अगर घर में जो है ना हर वक्त लड़ाई, झगड़ा, सख्त लहजा या बेतवज्जी हो, तो बच्चे अक्सर खौफ, गुस्से या एहसास से महरूमी का भी शिकार हो सकते हैं जी। देखें लिसनर्स।

अगर आप लोग भी इस तरह का मतलब ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि जम जम जम कलिता चमत जाना अन्ना, तो अच्छी बात है जी। लेकिन साथ में ये एक चीज आप मत भूलिएगा कि साथ में कुछ लेके भी जरूर जाइएगा, ठीक है ना। वैसे बंदा लेके जाए तो क्या लेके जाए जी, आजकल सब्जी के, और सब्जी तो खैर जो है कोई बंदा नहीं लेके जाता। फ्रूट के हवाले से अगर बात की जाए तो फ्रूट भी आसमान के साथ बातें कर रहे हैं जी, क्या कहते हैं आप।

All right, sweet listeners, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ. स्वीट लिसनर्स, आप FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी की नशरियात सुन रहे हैं. एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद जनाब. आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी और मैं हूँ आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट ताहिर जमान, जो इस शाम के हसीन लम्हों में चंद खूबसूरत बातें करने के लिए हाजिर हुआ है, या चंद खूबसूरत बातों के लिए आपकी महफिल में हाजिर है. उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और अगर मुस्कुराहट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शायद अगले चंद लम्हों में हमारी ये गुफ्तगू आपके होंठों तक एक हल्की सी मुस्कान ले आए. जनाब, जिंदगी का सबसे बड़ा हसन, या मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती, या जिंदगी का सबसे बड़ा हुसन यही है कि ये हर रोज़ एक नई कहानी सुनाती है. कभी किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है और वो अपना बन जाता है.

कभी कोई अपना इतना दूर चल जाता है कि बरसों बाद भी उसकी याद दिल के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है, कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी बन जाती है और कभी पूरी जिंदगी एक लम्हे में गुजर जाती है। शायद इसे ही जिंदगी कहते हैं, या फिर इसीलिए कहते हैं कि वक्त की कदर जरूरी करें, क्योंकि वक्त वापस आ सकता है मगर इसके साथ जुड़ा हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आ सकता। और कभी ऐसा भी होता है लेसन्स कि इंसान दिन भर हजारों लोगों के दरमियान रहता है, हजारों आवाजें सुनता है, मगर शाम ढलते ही उसे एक एहसास होने लगता है। स्वीट लेसन्स, मैं यहाँ ही बात करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ लेसन्स, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान दिन भर हजारों लोगों के दरमियान रहता है, हजारों आवाजें सुनता है, मगर शाम ढलते ही उसे एक मखसूस आवाज की कमी महसूस होने लगती है, एक ऐसा लहजा याद आने लगता है जिसमें सुकून था, एक ऐसी गुफ्तगू याद आने लगती है जिसमें बनावट नहीं थी, एक ऐसा नाम दिल में उतरने लगता है जिसे जबां पर लाने की भी हिम्मत ना हो। और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज है कि दिल अपनी पसंद का रास्ता खुद चुन लेता है। मुझे हमेशा लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो आपकी बात पूरी तवज्जो से सुन ले, क्योंकि सुनने वाले कम रह गए हैं, मशवरा देने वाले, एहसास करने वाले कम हो गए हैं, फैसला सुनाने वाले बहुत हैं, वक्त देने वाले कम हो गए हैं, मसरूफ होने का बहाना बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। स्वीट लिसनर्स, आज मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही हसास टॉपिक के हवाले से, बहुत ही हसास टॉपिक है।

दोबारा से ट्राई कर दें 0334-440-0976। ताहिर जमान आप लोगों के संग संग, आप लोगों के साथ साथ जी। टाइम कम है और कितना टाइम रह चुका है जी, हाय, मतलब ये कि आधा घंटा मुझे और बातें करनी पड़ेंगी। हाँ, हाय हाय।

0: ये मुमकिन तो नहीं, जो दिल ने चाहा वही मिल जाए। फरियाल से पूछते हैं कि क्या कुछ मुमकिन होते हैं और क्या कुछ मुमकिन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम फरियाल, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं ज्यादा ठीक नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा इस वजह से ठीक हूँ कि मैं तो इधर सवाबी में हूँ ना, पठानों के एरिया में, थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। अपने एरिया में अगर होता तो मैं पूरा पूरा ठीक हूँ, थोड़ा इधर।
1: और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी टॉपिक क्या है?
0: टॉपिक क्या लगा आगे खबर अश्वा जे बेबी लग गया और ठूल अश्पश गमदन कहानियां ने।
1: मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी।
0: क्या
1: भाई? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती
0: नहीं, मेरे मुंह से सुनना नहीं चाहती थी। रेडियो
1: बताओ बताओ, मुझे पता है।
0: बताओ बताओ क्या टॉपिक क्या है?
1: मोहब्बत।
0: हाँ, एक साइड का मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, इस पे क्या कोई बात करोगे?
1: वो
0: कहते हैं ना, कहा जाता है ना कि रात के पुरसकून लम्हों में जब कभी तेरी याद आती है, उस घड़ी में खुदाए बरतर से तेरी खुशियों की भी एक मांगता हूँ मैं, दुआ करता हूँ तेरे सारे गम मेरे हिस्से में आ जाएं। तो मुझे ये एक बात बताएं कि आपने ब्लेम किया मर्दों को, ठीक है? तो एकदम से मतलब आप कैसे ब्लेम कर सकती हैं हम मर्दों को कि हम यह है कि एक साइड पे एक तरफा मोहब्बत पे हमें ही आपने फिट किया है? सही सही सही सही। बस फरियाल दास बचे दास कार देगा ना छे दाखल लुख किस कमना सफा का अखल दुपटे सरा। आवाज जल दर्जी, आवाज दर्जी उसो फरियाल तजमुंगा आवाज न जी जी फरियाल पपत बान न पुए गम जी दासिंग चल दे असंग लेके कम देना हिसाब किताब दे छे ता ताजमा आवाज वोले न जी वोले कमन तो जमा खबर न पुए गे वोले वोले वोले, वोले।

प्यार है तुमसे, मगर प्यार से प्यार में मिली लगता है। कभी कभी लव सिर्फ बोले नहीं जाते, वो महसूस भी किए जाते हैं। और आज की ये महफिल भी कुछ ऐसी ही रोमानवी बातों के नाम करते हैं हम लिसनर्स, जहां हर जुमला दिल के करीब हो, हर लफ्ज एहसास बन जाए और हर बात सुनने वाले के दिल में उतर जाए। याद रखिएगा लिसनर्स कि मोहब्बत वो नहीं है जो सिर्फ साथ रहने से बनती है, मोहब्बत तो वो है जो दूर रहकर भी दिल के करीब रहे, जिसमें ना ज्यादा मुतालबा हो ना कोई शर्त हो, बस एक खामोश सा एहसास हो जो दिल के करीब हो, दिल को सुकून दे और हर लम्हा जो है ना दिल को सुकून दे।

अच्छा, कौन कौन इस ट्रैक को पूरा सुनना चाहता है? जो अगर कोई पूरा सुनना चाहता है इस ट्रैक के साथ मेरी आवाज पूरी मतलब सुनना चाहता है, तो वो मुझे जल्दी जल्दी से अपने पैगामात अपने मैसेजेस भिजवाए।

स्वीट लिसनर्स, कभी कभी यूं होते हैं, कभी कभी ये बात भी महसूस होती है, कभी कभी मोहब्बत दिल में होती है मगर जबान तक नहीं आती है, और दिल खुद ही अपने जज्बात से उलझने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर एहसास की छुपा हो, हर खुशी के अंदर जो है ना एक उदासी सांस ले रही हो, और हर मुस्कुराहट के पीछे कोई अनजाना सा डर बैठा हो। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में मिली हार से डर लगता है, या प्यार में मिली दिल को हार से डर लगता है। ये वो कैफियत है जनाब जहाँ दिल चाहता बहुत कुछ है और रुक भी जाता है, जहाँ कदम भी बढ़ाना चाहता है दिल और पीछे भी हट जाता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ जो है ना खूबसूरत नहीं होती, ये कमजोर लम्हों में इंसान को अंदर से हिला कर रख देती है।

और ये भी चाह होती है भाई कि कोई दिल से जो है ना दिल की बात। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था, बातें जो है ना आगे पीछे निकल जाती हैं जी, मैं ये बात मुकम्मल करता हूँ। कैफियत है जनाब जहाँ दिल चाहता भी है और रुक भी जाता है, जहाँ कदम भी बढ़ाना चाहता है दिल और पीछे भी हट जाता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ जो है ना खूबसूरत नहीं होती, ये कमजोर लम्हों में इंसान को अंदर से हिला कर रख देती है। बाज़ औक़ात इंसान खुद से ही उलझ जाता है, अपने ही दिल से सवाल करने लगता है कि आखिर ये कैसा रिश्ता है जिसमें सुकून भी है और बेचैनी भी है, जिसमें जो है ना चाहत भी है और खौफ भी है, और यही उलझन आहिस्ता आहिस्ता दिल पर बोझ बन जाती है जी, और बहुत बड़ा बोझ बन जाती है।

यहाँ लिसनर्स मैं कहना चाहूंगा कि बेकार की उलझन है, बेकार की उलझन है, हाय बेकार की उलझन है। दिल पे गुस्सा करो भी तो क्या फायदा, क्योंकि अच्छा दिल के गुस्से के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो दिल पा दिल का मतलब दिल का गुस्सा होता है सॉरी माधुरी जी, जो दिल का गुस्सा होता है, दिल पे गुस्सा करो भी तो क्या फायदा, क्योंकि दिल तो बस महसूस करता है, वो ना तक मानता है, वो तो बस किसी एक एहसास के पीछे चल पड़ता है। कोई एक एहसास, किसी एक एहसास के पीछे दिल चल पड़ता है और फिर इंसान जाकर भी जो है ना इस दिल को नहीं रोक पाता। और जनाब कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं होती बल्कि अपने ही दिल के साथ होती है, जहां एक तरफ चाहत खड़ी होती है और दूसरी तरफ डर, दोनों के बीच इंसान खामोश खड़ा रह जाता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा मेरी, ये बात भी याद रखिएगा

फाय की इंतहा कर दे। जख्म सीने पे हम सजा लेते और दिल में सारे गिले छुपा लेते, काश कि तुम अब वफा निभा लेते। दिल की यही आरजू रही कि काश कि तुम वफा निभा लेते।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94 सवाबी।

रंग दे मेरे लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, रंग दे मेरे, रंग दे मेरे लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, मैं तेरे बाद किसी का रहा ही नहीं। मुबारक शाह फिर से। लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, मैं तेरे बाद किसी का रहा ही

0: मोहब्बत न सही मेरा बरम ही रख लेते।
1: रंग दे मेरे,
0: मैंने लोगों को तुझे अपना बताया रखा था,
1: रंग दे मेरे,
0: ये बरम भी आपने नहीं रखी। हासिल मुझे तू पहले भी नहीं था, खोया मैंने तुझे आज भी नहीं।

0: टूटा हुआ
1: भरोसा,
0: दिल जोड़
1: दुआ
0: जा
1: वफा,
0: तेरे प्यार
1: ख्वाब
0: डूबे ऐसे कै
1: मन मोहब्बत
0: देंगे, मेरा यार बना है दुश्मन
1: भरोसा दुआ वफा ख्वाब मन मोहब्बत। कितने नामों में समेटे हो तुम
0: देश का,
1: सिर्फ एक तुम
0: कि मैंने तस्वीर,
1: सिर्फ एक
0: तुझे खौफ नहीं है जग का।
1: वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी जिंदगी है और मैं उसकी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं। चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं मुझसे लोग
0: दोबारा, गर होता तो इश्क दोबारा कर लेते।
1: चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं मुझसे लोग, इतना बुरा सुलूक मेरी सादगी के साथ।

0: सब सहारे अपनी जगह मगर तेरी कमी दिल खा गई मेरी।
1: जख्मों पे हम लगा लेंगे रंगरेज मेरे, मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा दे।
0: दिल सुकून चाहता है
1: और कि मैंने तस्वीर
0: जो तेरे सिवा मुमकिन नहीं
1: है जग का।
0: कभी खुद को मेरी जगह रख, तुझे तरस ना आया तो छोड़ देना।

मुश्किल से मिलाता वो शख्स, मुश्किल से मिला था वो शख्स, मुश्किल में डालकर चला गया। कुछ तो

कर, तब ये पता चला कि मुझे उससे इश्क है। जब उसकी दुख पर उससे सिवा दुख मुझे हुआ।

है जब तलाश करोगे हम जैसे चाहने वाले, जो अपनी याद से ज्यादा तुम्हें याद करता है।

0: जब जिस्म से रूह निकल तो दिल से लोग क्यों नहीं।
1: कुछ तो भरम रख मेरी वफा का तन नैसे
0: जब तोड़ सिरू तो दिल से लोग क्यों नहीं।

0: लगा मुझे रो।
1: हमने सोचा था कि बताएंगे सब दर्द तुमको,
0: भी पढ़ी मुझे खौफ ने,
1: पर तुमने इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो।

0: कर लेते। कोई और तुम्हें न मांगे,
1: दर्द मेरे तू
0: ये दुआ भी हम ही मांग लेते हैं। कोई और तुम्हें न मांगे,
1: तेरे
0: ये दुआ भी हम ही मांगते।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस कर।